छत्री को पूत हां चढ़दी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है छत्री को पूत हां ब्राह्मण को ना है तैसा पे आवत हां जो करो और जंजार जितो ग्रह को तुह त्याग कहा जितता मैं धरो और जंजार जितो ग्रह को तुह त्याग कहा चितता मैं धरो अब रीज के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो जब आम की आज निदान बने।

खिलौना, अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी, अस खिलौना। मेरा नाम गोविंद

0: महीने के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुधार करे अब आग टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे
1: इन्हीं की कृपा फुन ताम भरे
0: इन्हीं के प्रसाद को विद्या रही इन्हीं के प्रसाद को विद्या रही इन्हीं की कृपा सब शत्रु में

0: तुम्हारे ध्यान को।
1: गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतदार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे। साहब फरमाते
0: जे जे तुम्हारे ध्यान को नित उठ जाए है संत, जे जे तुम्हारे ध्यान का नित उठ जाए है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान।
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार, आप मुक्त मुक्त करे संसार,
0: नानक जिस जन को सदा नमस्कार, नानक जिस जन को सदा नमस्कार।
1: नित जपिए सांस।

जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जा

लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी पेत।

तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन इके लड़िया तिन दुख ना कबहू।

निर्धन को पाले निर्धन को पाले निर्धन को पाले हाय हाय निर्धन को पाले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघ दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू सत्संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

जे लोड़े सदा सुख भाई साधु संगत गुरे बताई। निशानी की है, नकली भी बड़े हैं। निशानी की साधु की,

की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वालिया दी संगत ना छड। कबीर साधु की संगत रहो।

तू अपना बिरद पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बां फड़ ले। जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती। जिवें उना दी पैज रखी जिवें उना दी रखिया कीती जिवें उना दी

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा। अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इसदे कर, बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा है, बिचारे रो के रात नू भुखे सौ जांदे हन, ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकलदियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे, इना नू पाल पोस भी नहीं सकदे, बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखे रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक

आखिया अर्जुन तेरा मेरा की संबंध है आ भगती दा। तू रथ ते बैठा होया ते मैं तेरा रथवान रथ नू चला रे। ए किस दे सदके, ए प्यार दे सदके भाई। जिवें उन्हां नू तारे आ, जिवें उन्हां दी बांह।

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ए आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जाना। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतरजामी है। हर अंतरजामी सब बिद जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा ते जिस वेले मारिया तीजा फक्का भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रहे। आखिया इतबार नहीं आया। कहन लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तो सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्रे। सुदामा दलित्री हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आख्या ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जा। ता बहाना लगाया भी एडे वड्डे पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई उगों धान भी छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चौल जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जाके

आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए इन्हें दिन किथे रे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा भर के ले आई, जिसले चरण तोड़ लगे आओ सखा तुम पाए महा दुख, आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निद रोए। नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो, बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी रात का जल लेके खलोतियां रहियां, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामा

बस गली बाती प्यार बड़ा कीता है, पर कुछ दे दिन दे घरवाली नू की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा। भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिस दे बुए ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन, ओ की आखेगी ओदे द्वार को तू खाली आ गए हो, तेनू कुछ ना मिलिया। ए मन विच पिया सोचदा ही सी जिसे कुटगल वखड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी। पुठे पैरी सुदामा तुरिया कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो, चंगे एस जमाने दे यार जारो, जेड़े हाल आए मुड़े जाम दे हां, केड़ा बख्श दिता सानू माल यार, हथों चौल भी दे गवा बैठे, अजड़े कुछ कुछ चौल सन ओ भी भुखा खा गए, जे ना खांदा ते असी एक डंग उबाल के खा लेंदे साडे बाल बच्चे का गुजारा हो जांदा, ओ भी खा गए कुछ ना बख्शे। बड़ा निराश होया सुदामा, मन विच चोरदा जिस वेले घर वापस परते आ ते गली विच आया ते की डिठा भी जिथे उसकी चुगी सी उथे सोने का महल खलोता। सतसंग बोलो श्री वाह। किसे नु पुछदा क्यों भई इथे तां सुदामे दी चुगी सी, मैं आख्या सुदामिया इथे तेरा ही महल है, ये सोने का मंदिर। हैरान पिया होवे सुदामा भी ये किवें बन गया सोने का, जा अंदर वड़िया घरवाली आई पैरी मत्था टेकिया। सुदामे ने आखिया आ सोने का मंदिर, उसते भी नेत्र बार आए ते आख दी है स्वामी मैं आख्या सी ना एक बारी भगवान कृष्ण महाराज दे कोल जरूर जा, साडा दलिद्र कटिया जाएगा, साड़ी गरीबी कट्टी जाएगी। आ जो कुछ पे वेखदे हो सोने दा मंदिर अंदर पदार्थां दा ढेर लगा हो, ये सब कृपा भगवान दी है, ये सब बख्शिश उस दी है। अतको ना सोने दा मंदिर कर दी हालत नू तको ना, कितने पदार्थां दा ढेर लगा हो। मुण सुदामे दे भी नेत्र बार आए, मैं मन विच की सोचदा पिया सां ते भगवान ने मेरे नाल की कीती, मैं की जानदा सां कि तुहाडी इतनी कृपा है कि तुसी चाहो ते एक फुरने दे अंदर ये सोने दा महल उसार सकदे। भाई साहब आखदे हन पुछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए, लैके तंदुल चबियन विदा करे अगे पहुंचाए, चार पदार्थ संकुंच पठाए। अज भगवान कृष्ण महाराज की कृपा दा सदका सुदामे नूं चार पदार्थां दी प्राप्त हो गई, जिवें बाणी विच आखे है चार पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए होमे छोरे, आखे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी, जिस जन को प्रभ दर्श पे आसा नानक ताके बल बल जासा। जिन्हां ने गुरु घर दी सेवा कीती है भई प्यार दे नाल मन करके पर उपकार दा जीवन जीवे है, उन्हां नूं साईं ने बख्शिशां कीतियां रहमतां कीतियां, ते जिन्हां ने तेरा नाम जपिया आखिया जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन, जपां तो हीणे तपां तो हीणे, पर जिन्हां ने तेरा नाम जप